0: कैसे कितने संत होंगे,
1: कितनी पानी कितनी पानी कितने पात्र,
0: कितनी भक्ति नानक अंत न अंतर।

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गलवड हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत

लेख लेख धर्म विचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन

माया जिन उपाई कर कर देखा है कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहब।

गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को हुए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खस

मिलै त्रिपताशह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सत

चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरया। सिर सिर रिजक संबाहे।

बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर

आपे भुग पाजी हों तो दबे न अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाह।

तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर के क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई।

जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख वखाना, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख है जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आशा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले ने वासा, पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस।

नहीं पढ़या, मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जीव करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा।

आयु थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशान है, काट काट के पट पट की जान है। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ।

कालमो निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा। ताकौ करपाहन अनुमानत महामूड काश पेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी पूत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

तब काला दुष्ट अरिष्ट टरय तत काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके पाप तनक मोहरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सुवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तगा वह हरि केरा मन जिने वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे, पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तू दे आहे। सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सत गुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ।

साजनो तुम ईत मेरा ग्रह तेरा सब के हो जन को प्रभ संगे असने हो साजनो तुम ईत मेरा ग्रह तेरा सब के हो करता तेरा सब किश है जिस दें सो पावे दात है दात रखी हाथे अपने जिस पावे तिस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगह जापै सेई गरीब नवा सचे पातशाह जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है जो आप गुरु दरबार विखे संध्या वेले दे दीवाना विच हाजरियां भर के लाहे लै रहे हो सो आओ हुण समा हो रहा है अज दी अमृतमई बाणी दी लड़ी वार कथा विचार दा सत्कारयोग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी जो कि अज तो श्री जपजी साहब जी की पावन बाणी की लड़ीवार कथा आरंभ कर रहे हैं जो 27 तरीक तक चलनी है जिवें आप जी ने स्टेज तो बार बार दस्या जा रहा है कि पूरा महीना अमृतमई बाणी श्री जपजी साहब जी दे कीर्तन विचार दे नाल आप सारियां संगतां जुड़ सकते हो सो आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो जी भुलां दी खिमा बख्श दिओ पते दी सांझ पाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

जे भुले जे चुकी साई पीत हिंजी काढ़िया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरहो से वाडिया हो ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एहो महिंजा आसरा सजन तू है सैन तू मैं तुझे उपर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू ने माणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वेखाल एहा पाई मूंदा तड़ी नित हिरदे रखा संभाल पाव जलाई पंद तो नैनी दर्स दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर थीवे कृपाल हर की वडियाई हो आख ना सक हो मूह

गुरुप्रसाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी साध संगत वड्डियां भागां वाले होए जे

सतगुरु साहिब जी ने सानू पहला प्रकाश दिहाड़े दी बख्शिश हुई। जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा इना दिना दे विच बैठे हैं, उथे ही इना दिना दे विच जो पहले प्रकाश दिहाड़े दी याद विच सतगुर साहिब जी दियां इलाही बख्शिशां नूं विचारदे ने। सो इस दरबार दे विच भी सतगुर साहिब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रख के जिथे 31 रागां दा राग दरबार, उथे गुरु नानक साहब महाराज साहब गुरु रूप परमेश्वर वालों पार ब्रह्म परमेश्वर का बख्शिया होया जप, जिसनू इस घर दे विच जप निशान, जप जी साहिब, उस परमेश्वर का शाहकार गुरु नानक साहब महाराज साहब ने साढ़े उत्ते बख्शिश किया, जिस तो वड्डी कोई होर बख्शिश नहीं है। सतगुरु साहब जी आप गुरु नानक साहब तौर तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने, गुर परमेश्वर ने, सिख पंथ कोले दो विद्वान एहो जे ने जिन्हां उत्ते किसे दा कोई किंतु नहीं। उन्हां विच भाई साहिब भाई गुरदास जी, जिस चीज दे उत्ते भाई साहिब भाई गुरदास जी दी मोहर लग जावे, भाई साहिब भाई नंद लाल दी मोहर लग जावे, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब मोर ला देन, जे उस दी बाबत कोई होर विचार किसे पोथी च लिखी गई होवे ते गुरमुख की सोझी रखने वाले जेड़े आ वो भाई साहब भाई गुरदास जी की बख्शिश कीती हुई विचार नूं मुख रखते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब की बाबत यह फरमाना किया है कि नारायण निज रूप धार, नाथानाथ सनाथ कराया, उस वाहेगुरु अकाल पुरख ने आप अपना आया है, आप अपना रूप धारिया है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण है, वो तुरों पूर्ण स्वरूप दे विच आया है। बेशक किसी ने होर ग्रंथां च गुरु नानक साहब नूं विष्णु दा अवतार जां कुछ होर कहा होवे, भाई गुरदास जी दी इस वचन करके वो सब रिजैक्ट हो जाते हैं। तो सतगुरु साहब जी ने जप जी साहब विच एडी वड्डी बख्शिश कीती है कि जप जी साहब दे नाल जुड़ के इहदी रसना चो निकले हुए बचन जिहड़े आ वह सत हो जाते हैं। जप जी साहब दे विचों ही सतगुरु साहब जी ने यह फरमाया, एक कौतिक रचिया इथे कि तेरी उस इलाही सिंघासन तक पहुंच हो जाती है जे तेरी ए मन की भावना, कोई दुनिया की भावना इच्छा ना होवे। जिदन गुरु नानक दे सिख नूं गुरु नानक दे घर की सोझी

सगल समग्री तुम रहे सूतर धारी, तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम्ही। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंदनो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईए जिस दिठे शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरया करन उन दया पे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी। सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान सब जाते चाली मुक्तिया। हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई ते के निट कीता। तिना प्यारिया सच प्यारिया की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणिया ने धर्म हे सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। हारिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लो कुरबानियां कीते। धर्म ने हारिया सिक्खी के सस्वर सत्संग निभाई। तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी किरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चिता विच तावन का सदका सर्व सुख है जह जह खालसा जी। साहिब ता तर शरियाज देखत के फतेह। बिरद की पाए पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विशा दान भरोसा दान। दाना सरदार नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन सुना चुकियां झंडे बंगे। जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत कर रखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शे माण्यो के मान ताण्यो के ताण। न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणा चरदास बेनती महाराज जी। आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना आरती शब्द कीर्तन अज जपजी साहब के पाठ की विचार की आरंभता होए। उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन है महाराज जी। समुची सेवा निभाद बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या हूं बेहत फुला बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करने का बाद उदम बख्शिश करना जी। बाणी का अभाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसौला आईया संगतां की हारी दर प्रवान करने सभना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनिया। सभना नूं दरों करो नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी। दुखां कलेशां रोगां का नाश करना जी। सुखां का प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी। बेन संगतां दूर दुराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी के जाप सरवण कर रही हूं। जाप सरवण करद्या आप जी का धनवाद करद्या बेनत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा की महाराज जी। सारी संगत की हाजिर दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरतक माया भी बरकता पाया श्रद्धा भावना संपूर्ण करनी आप जी के दर घर के सेव। अवजोत सिंह अर्श नूर कौर जी परिवार की सुख शांति वास्ते अरदास बेनती करते हैं। कृपा करनी सेव परिवार की महाराज जी। अरदास बेनती प्रवान करनी परिवार घर में सुख शांति बख्शिश करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी दर घर के सेवक हरजीत गरेवाल वाहगुरु जी का शुकराना करद्या गुरु घर वास्ते 101 डॉलर माया भेटा करते हैं। कृपा करनी सेव परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार दी श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी। सिख पंथ लई एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी। खालसा पंथ नूं चढ़ती कला बख्शिश करनी जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता होई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारियां संगतां नूं निहाल करो जी। सहि करम प्यारे मेरे नाल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चिता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुहरा आग्या पही अकाल की तवी चलायो सब सिखन को।

जय कर कीर्त्या की है करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे तन कीमत ना पवै तिसदाते कमण समार संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यो मेल घर घर रेहो पहुंचा सदरे नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन रागा सा महला पहला शिय घर शिय गुर शे उपदेश गुरु गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा तिथि बारी माहो होवा सूरज को रुत अनेक नानक करते के वेस रागतना श्री महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती हो।

पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। सागत हर रस साधना जानिया, तने अंतर हों मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चलह चुबै दुख पाव है, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी।

नाम जन सो बापाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन के मालक जीना, हर तन जन कुआ प्रगदीना। हर हर जन के उठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पूजन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेत तरे। पार जाते हर को नाम, काम ते न हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता। नाम की महिमा संत ऋदवस है, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संगवड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछे वरना हुए, नानक गुरमुख नाम पावे। जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजिस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्यागन मध्य फिरया। अनेक प्रकार की बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती। नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, माहु दास तभी सर थीवै। अगन माही होमत प्राण, कनिकसव है वर पूम दान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हमें मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्व गुमान न मन ते उठे। सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबो न बिखिया टरे। जल तो है बोधे अनीत, शुद्ध खा हुई काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पथत बहुमूच। बहुत सियान जम का पव्या पै, निक जतन कर तृष्णा त्रापै। पे अनेक गनी बुझे, कूट पव दुर्गै नि सिजै। छूट सुनायु पयाल, मुह व्यापै माया जाल। अवर कर तू सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नि मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जेको मागे, साजना की सेवा लागे। जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जेको अपनी शोभा लूरे, साध संगे हों मैं छूरे। जेको जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सात संग जाका मिटे विमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणीय सब ते उच्चा। जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिर साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पापुन नहीं लिपा। निर्धन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाव तेरा थाओ। निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत में जानो आपे, अपन संगा प्रवराते। तुमरी इष्ट तुम ते हुए, नानक वरना जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरया। सगल उद्यम में उद्यम फला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम था, नानक जी कट वसै हर नाम श्लोक। निर्गुण यार याने आ, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिश्चित रख, नानक निभ ही नाल। अष्टपई थी हर मैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू सासवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद। बिरध पयाओ पुर साख सैन, मुख पयाओ बैठ को दैन। हे हो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सी जय। जे प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पी वै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला। जे प्रसाद भोगै सबरसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करने तरसना, तिसे त्यागवर संग रचना। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लिहो प्रव्यापे।
आदंत जो रखन हार तिस्य प्रीत न करे द्वार जाकी सेवा नव निध पावे तस्य मूढ़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर स सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर कह मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदाय भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै साथ छोट छूट संग मचै जो छिजना सो अस्थिर कर माने जो ओवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित विकराल नान काट लिहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया छप सुनाए किछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान बाहर अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह था जा कै अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहले हो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कही है तू समझै पूरा कहाँ विष्णु पद गावै गुंग जतन करे तौ भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाय सुहा वह न चीत जो बैराई तासुप्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अनद खेल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मने प्रतीत का नया वह मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ ध्रोह होयाहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम कह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कन्हेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छूट कै लागह आन सुहाए नानक कहू नसी जई बिन नावे पत जा इष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहू कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताकू की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन बूटा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहू अपनी दे रास खात पीत बरतैन दुलास अपनी अमान कच बहुर साहू ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु से आज्ञा राखै प्रभु की आज्ञा मन ने मत है उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हित सरपर होवत जान नेत फिर किचाया सो रंग लावै ओ बिन सह मन पछतावै जो दिसे सो चलनहार लपट रहो तै अंधार बटाऊ समझू लावै नेही ताको हाथ नाया वै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती यशो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तानी पर उपकारा मिथ्या दास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ धाम
ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਵੰਡ ਲਾਵਤ, ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰੈ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਕੁੰਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇ ਆਪੈ ਮਾਨੈ, ਆਪੈ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ, ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ, ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕੈ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਫਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਤਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ, ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅੰਗਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਲਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾਠ, ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨਾਠ ਪੈਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਕਾ ਵਿਜੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ, ਮੁਖ ਤਾਕੂ ਜਸ ਰਸਨ ਬੁਕਾਨੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ, ਨਾਨਕ ਪਤਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਵੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ, ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਧਾਕੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸੁਭ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ, ਰਾਖ ਪੁਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ, ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ, ਕਿਸੈ ਧਿਆਈ ਜੋਏ ਕਲਕੈ, ਇਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨਾਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਿਤਾਰੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰ ਕਤਲਾ ਦੋ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਵਰਾਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵ ਆਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ, ਚਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ,
नानकिन कह कछु नहात। श्लोक अगमगाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की चर्ज कथा। अष्टपदी साध गह संग मुखो जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटै अभिमानु, साध के संग प्रगटै सुज्ञान। साध के संग बुझै प्रभु तेरा, साध संग सब होत नवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी। साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा। साध संग हुई सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतु तावे, साध संग स्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सेव नहीं पैर, साध के संग न बीघा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सव्याप। अपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कब हूं तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध संग व्यस्त गो चरल है, साधु कै संग जर सह। साध के संग बसै थानु चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग जड़ै सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उदारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गामु, नानक साध के संग सफल जनामु। साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन पेट दहोत निहाल। साध के संग कलुख तहरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध के संग न बिरता जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उतरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै परम मीठा, साधु के संग कट कट ढीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध के महिमा भेद न जानै है, जीता सुने तीता बखियान। साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक उपमा रही भरपूर। साधक शोभा का ना ही अंत, साधक शोभा सुधा बेअंत। साधक शोभा उचते उची, साधक शोभा मूचते मूची। साधक शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दर्शमान, जैसे राज लंको लाग्य तुल्पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बस्ता को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक जो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगा, जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नात्म रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ पूरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा,
ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को पूजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माय। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगलकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतरनाम, सर्व मैं भेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रै रूप न भेखै नेत्र, सादगी टहल संसंग हेत। कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक ओड मदे को ऐसा परसो। वैसन सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे। मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दिड़ै वरै नाम जपावै, नानक को वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मन खूवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तने अर्पै विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नामा तुम मैं शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नायावै। वेद प्राण सिमरत बुझै मूल, सूखम मैं जानै स्थूल। चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सासु पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै। सर्व रोग का उखद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिसन दरी आया, दास संतन भाई तिन पाया। सुधा निकट निकट हर जान, सुखदास दरगै परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझी परे। सगल संगात मुदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सोख कहावै। तैसा हर्प तैसा उसोग, सदानंद ते नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिकाटी। तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजा। जो वर्ताए साई जुगत, नानक पुर कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन्नाओ। आपे करन करावन जोग,
प्रभावै सोई फनहूब पसुरै आप अंतरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करै अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहु विधनिक प्रकाश पदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिघातम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रहे कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश पर माहे जित जित लावो ते तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वंतीवे कई कोट जखी नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते नीरे सबूते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजूनी फिरे कई कोट बैठ दही खाए कई कोट का लह थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया मैं चिंता जय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभु के हाथे कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभु को खोजन थे आत्म है पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो अब सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अरकंड कई कोट गास ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदैव के कंकार कई कोट कीने बपात प्रभ ते होए ब्रह्मा समाता कंत न जाने कोई आपे अब नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे कु नेत्रे कई गोड़ नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे कई गोड़ नाम गुण गावे तुमरा सुख सह सुमावे अपने जन को सा सा सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल तल मही लसो अष्टपदी करण करावन करना जो जो तिस भावे सोई हो किन मैं थाप थपन हार अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहा वै हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे निकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण पाखै प्रभावै ता पत तुधारै आप करै अपन विचारै दूआ सुरै काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवरण आया वह कहो मानुक ते क्या हुआ वह जो छिपावे सोई करावे इसके हाथ हुई तो सब किचले जो छिपावे सोई करे अनजान विखिया मेरे चय जे जानता अपना बचे पर मैं भूला दै दिस्तावे निम कमाए चार कुंड फिरे आवे कर कृपा जिस अपनी भगती नानक तेजन नया नानक तेजन नाम मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा का दृश्य कछु न आवे तिस तत्काल दै दृश्य प्रगटावे जाकु अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पून ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे दिख बढ़ाई इसका बल नाही सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फंथियो कब हूँ ऊंच नीच में बसै कब हूँ सो हर रंग हसै
कबू नींद छिंद व्यवहार कबू बकाश प्यार कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला बनहार कबू नृत्य करे भोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू हुए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे ज्यो प्रवरा कहती ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबू वे पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग वे जिया अनिक जोन भरमे परमिया नाना रूप चो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावे तिवै निचावे जो दिस पावे सोई हुए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत उपावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो वत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे तान भूमिका

आप उपदेश समझय पापी रचिया सबके साथ आपकी नुवापन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन कहो किच हुए थान तनंतर कैस हुए अपने चलताव करने हार गौत कर रंग आपार मन में अमन अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सत सब किन्ना कूड़ मध्य किने बिरले छीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर पार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बकियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तिस नामै जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच न जाए संत दुखी का था को नाहि नानक संत भावै तौ पीगत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खिन टिक न पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्वरो संत के निंदक को सदा बिजो संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत भावै तो उसका पी हुए मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत भावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद विच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहि अपन बीज आपे ही काहे संत के दुखी कबर न राखन हार नानक संत भावै तां लै उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यो पाव किंद नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै केला ज्यो बुआड़ तिलखेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म तेरै संत का दुखी सद मिथ्या कैद किरत निंद का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर गै मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी न मरे न जीवाइए संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उचलै निराशा संत का दुख न तृष्टै कोए जैसा भाव है तैसा कोई होए पैगृत न मिटै कोए नानक जानै सच्चा सोए सब घट तिस क्यों करने हार सदा सदा तिस को नमस्कार प्रभु की उस्तुति करो दिन रात तिसै त्याहु सास ग्रास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम दे बड़भागी नानक जन शेष लोक तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पो जाय अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक भगवान जिसका दिया रहे अघाय बहुर न तृष्णा लग गए आय
मारे रखे को आप, मानु कह किछ नाही हाथ। तिसका हुकुम भूसुख होए, तिसका नाम रखंट पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए। नानक बिघ न लागे कोए, उस्तद मन में कर निरंकार, करमन मेरे सदव्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग। सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटै भाव जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार। चेतनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सूझी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, जिसकी जानो तृष्णा बुझै। सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अंधन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलताप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनिक जुगत रच थाप थाप। अविनाशी नाही किच खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलक पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारण, प्रभ के सेवक

ताकी कीमत किने ना पाई, अनिक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिम रह, सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। ए हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवको दे, मोह माया के संग न लेप, मन मह राखे हर हर एक, अंतकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तप्त माहे ठाठ वरताई, अनद पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चुका निर्भौ होय बसै, सगल ब्याज मन तेक है नसे, जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जपना मुरारी, थित पाई चूके परम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण भी उही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोय, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय परगास साध के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक वार नानक बले हारी, सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक एह धन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल रित माहे उर तारो, कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, ए धन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुंट उठ धावै, सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुखो नित बाछे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस सोवा को करह भली करनी, सा सोवा भज हर की सरनी, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दर गह परवान, मन पर बोध हर के नाए, दह दिसावत आवै ठाए, ताको बिगन न लागे कोई, जाके हृदय बसे हर सोए, काल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नान काटी जम फासी, तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गवन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरुदेव, यो रतन जन्म का हो उतार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपावन छूटन हारे, सिमरत शास्त वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए, संग न चालिस तेरे तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुत मीत कुटुंब अरबनता, इनते कहू तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहू कवन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेहे इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो जीत, चरण कमर राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपहो अवरा नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गत पावहो, सार पूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नान गुन गाओ, गुन गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए होमे बिख पैल, हो चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाड़ स्यानप सगदी मना, साध संग पावा है सच तना, हर पूंजी संच करो व्योहार, ईहा सुख तर गया है जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सालाह, एक सिमर एको मन आह, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रभ बे आप, अनेक विस्तार एक ते पै।

आराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्रभदाता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानकी प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जनाकी मागो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल से ओला के प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मागे नाम प्रभ सास प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे विरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निविलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहा सतसंग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यो बिसरे जे काल ना पाने सो क्यो बिसरे जे किया जाने सो क्यो बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यो बिसरे जे जीवन जिया सो क्यो बिसरे जे अगन मह राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यो बिसरे जे बिखते काढे जन्म जन्म का टूटा गाढे गुर पूरे तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक चन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवर नाम जपावहो भगत पाए तरिए संसार बिन भगती तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दूप का हो वतनास नानक नाम जपहो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्र हो पीक दर सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए भक्त जना के मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बात दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्ब सुमाए प्रभ बख्शंत दीन दयाल भगत बशल सदा किरपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए लावे मन ही हम निर्गुण यार नीच अजान नान तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए एक निमक हर के गुण गाए अनिक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सु करनी सोवा तनवंत हृदय वसे पूरन गुरुमंत साध संग प्रभ देहि निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकारे कृष्ण दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कुमार जब इसका वरण चोहना जापत तब हर सो को किसे व्यापत जब आपन आप ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक कहे हर अगम अपार तब नर्त सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलत आप कर निहार नानक ठाकर अपार अवनासी सुखापन आसन कह जन्म मरण को कहा बिनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर आगते
तब कौन छुटे कौन बंधन बाते, आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहू क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भू कवन त्रिपतावे। कर्ण करावन करने हार, नानक करती का नाहे सुमार। जब अपनी सोवा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाव मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आपह परवीन, तह भेद कतेव कहा कौ चीन। जब अपन आप उतारे, तो सगन अपसगन कहा बीचारे। जह आपन ऊंचापन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो हो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसह पे आप तुमाया। आपस को आप आदेश, तह गुण का नाही परवेश। जह एक कह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह आपन आपापति यारा, तह कौन कथे कौन सुने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आपह पहुंचा। जह आप रचो परपंच आकार, तह गुण में कीनो विस्थार। पाप पुंत पै कहावत, कौ नरको स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपिमान, अनेक प्रकार की योग बखान। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचे तो नानक के। जह अवगत भगत है आप, जह पसरे पासार संत प्रताप। दुहु पाका आप है तनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आप है कौत करे नदचोज, आप है रस भोग निर्जोग। जिस पावे तिस अपन नाए लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगंत अगंत अतोले, ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आप है एक आविस्तार। जात इस पावेता सृष्ट उपाय, अपने पाणे लए समाए। तुम ते पिन नहीं कुछ होए, आपन सूत सब जगत परो। जाको प्रभ जियो आ बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्थी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंत सब ता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मन हो भी सारे। तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की युक्त जाके सब हाथ, अंतर बाहर जान हो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर है दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तिव जाने आप, अंतर जामी रहो बेआप। प्रित पाले जियन बहुपात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात। जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक जानिया। जन लागा हर एके नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूई परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, अंदिन पूछे है गुर के पैर। ए लोक सुखी है पुरलोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का एह सो आओ। आठ पहर प्रभ भिखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावह, मन इच्छे नानक फल पावह। हालत पालत दुए ले स्वार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिख्या, जिस मन वसे तिस साच परीख्या। मन तन नाम जप हो लिवलाए,
दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहु ना आवह जाहे। तिस ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार त्याए। निरपौ जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पहुचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुण सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हारूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट ना आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास अष्टपदी। संत संत संत संग अंतर प्रभ ठीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टा है। नौनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम। सुन समाद अन तहनाद, कह न जाई अचरज अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंत सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरन माहे आकाश पयाद, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंत तह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मह देख, ससी असूर नखत्र मह एक। बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोलना कब हु डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल ना पाई है गुणे अमोल। गुणो अमोल सर्व ज्योत मह जाती ज्योत, तार रहो स्वामी उत्पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मेह एह विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुनो शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, कर्ण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्राप्त सगली उत्पत। तिस भावेता करे विस्तार, तिस भावेता एक ओंकार। अनेक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप बरतारा, सर्व नैना पिखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जानक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीम आया। सबके मत अल्प तो रहे, जो किश कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इस ते होए सो नाही बुरा, उरे कहू के ने कुछ करा। आप भला कर तू ततनीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराज। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हे जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निट कर पेख। साथ साथ सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद।
आस अनत्या गुह तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग गगन सागर तरो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नर की निवार उदाहरो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक कहे निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे नान कुदरे तिन के साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सब रैन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूरन हुए हुई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो हो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मुनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन वसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न हुए आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रित नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मत सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहि निदान जपे मन कोए सब चुक मेहता की गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद वखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्त क्रम प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत जिस जन आवे हर प्रभ जीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उदारे निर्मल सोवा अमृता की बानी एक नाम मन महे समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊचता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमणि सबते ऊचता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अतुलित हैं, अतुलत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ है, अगम्भ है, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं हरता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद। नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद। के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमें सुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करीम हैं, के रोजी देहांत हैं, के राज करहंद हैं, क्रीमल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमल खिराज हैं, ग्रीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हरासुल फिकन हैं, कलंकंग प्रणाश है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब की राह है, के नरकंग प्रणाश है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के जोरत जमाल है, के अचलं प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलं अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शांत त्व प्रसाद। मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनुगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, देश वेश अपंड, जल थल महंत, देश वेश बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तार तुरास, अजान बाहो एक सदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद, खालखंड ख्याल, गुरु बर अकाल, कर कर प्रणाम, चेत चरण नाम, अनशेज गात, आज जिना बात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनठट भंडार, अनठट अपार, आडीठ कर्म, अतटीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर भूल मना शांत त्व प्रसाद। करुणालय है, अरिकाल्य है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, कृत के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्ब्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खालखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायिक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायिक है, भव भंजन है, अरिगंजन है, रेप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात शंग, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तं अततं स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्र।

अनादं विभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अघा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पूजंग प्रयात शंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बिभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं बिभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर ओंकार जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप फली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर बत पंख हले ना हलेंगे तोर आरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चख चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खापेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कूट स्नान गजादिक दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फासे जम फास परेंगे जे नार श्रीपत के प्रस है पाग ते नार फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बात ध्यान लगायो नहत फ्रियो लिए सात समुद्रन लोक गायो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बै सो बितायो साच कहो सुन ले हो सब
जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं, काहू पशा को सीस निवायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मिरतान को पूजन तहायो। कूर किरिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मिरतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे ओ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मुहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संग्रिया। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे रख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धारत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पायो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पायो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जी अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट
दुख तहावा मरे, पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट न है आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताकि ताप तनक मोह हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खाड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दाय लेहो उबारी, सर्ब ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किल बेखो सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता, श्री अस तुज जब पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला, मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसाए व्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहै, हो जो जाति एक बार चौपाई को कहै चौपाई, संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा, सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ, राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जानेओ, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहेओ सब तुहे बखानेओ, दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ पै, कहेओ तो

कहियो तुहारु द्वार, बाहि गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया, सहज से ती मन वजियां वादाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईया, शब्द ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

अमरण मनहो वेसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर हज्यों बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो हो निर्मल बारहो निर्मल बारहो ता निर्मल जियो हो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहाय गुरु नाले। जेकु सिख गुरु से ती सन मुख होवै होवै ता सन मुख सिख कोई जियो हो रहा गुरु नाले। गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले। आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाणै कोए। कहे नानक सुनहु संतो हो सो सिख सन मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होरथ है कोई पुछ हो बेबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए।

मत पत दे राखे आप वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दी दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

अंगीकार ओह करे तेरा सबन गला समर्थ स्वामी कह नानक मन मेरे साचे साहेबा।

सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कुमावह वदै विकारा। नाम न सेवह क्यों सुख पाइय, बिन नावै दुख पाएदा। आप करे तै आप कराए, गुर प्रसादी किसे बुझाए। गुरमुख होवह से बंधन तोड़ह, मुक्ति कै घर पाएदा।

होई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सा लाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटन हारा, हर कै नाम मन तन मन शीतल हुआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वापारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै भाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाए खपाए सोई, गुरमुख हुवे सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वस न हुई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुर सेवे मन वस आवे, मन मारे मन समाए दा, मेरा तेरा तुद आपे किया,

सेवा हुई, पूरे भाग गुरु सेवा हुई, नदर करेता सेवे कोई, जमकाल तिस नेड़ न आवै, महल सच्चा सुख पाएदा, तिन सुख पाया जो तुद पाए, पूरे भाग गुरु सेवा लाए, तेरे हाथ है सब वड्याई, जिस देव है सो पाएदा, अंदर प्रगास गुरु ते पाए, नाम पदार्थ मन वसाए, ज्ञान रतन सदा घट चानन, अज्ञान अंधेर गवाएदा, अज्ञानी अंधे दूजे लागे, बिन पानी डुब मुए अभागे, चल दिया घर दर नदर न आवै, जम दर बाधा दुख पाएदा, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई, सतगुर सेवे तिस मिले वड्याई, दर सच्चे शोभा पाएदा, सतगुर नु सेवे तिस आप मिलाए, ममता काट सच लिवलाए, सदा सच बण जह वापारी, नामो लाहा पाएदा, आपे करे कराए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम वसै मन अंतर, नामो नाम त्याएदा, मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, भाणे विच को विरला आया, भाणा मन्ने सो सुख पाए, भाणे विच सुख पाएंदा, गुरमुख तेरा भाणा पावै, सहजे ही सुख सच कमावै, भाणे नू लोचै बहुतेरी, आपना भाणा आप मनाएंदा, तेरा भाणा मन्ने सो मिलै तुद आए, जिस भाणा भावै सो तुझै समाए, भाणे विच वड्डी वड्याई, भाणा किसै कराएदा, जा तिस भावै तां गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, तुदे आपणे भाणे सब सृष्टि पाई, जिसनु भाणा देहे तिस पाएदा, मन मुख अंध करे चतुराई, भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई, भरमे भूला आवै जाए, घर महल न कबहू पाएदा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा तुर फरमाई, सतगुर सेवे ता नाम पाए, नामे ही सुख पाएदा, सब नाभ उपजै नाभ छीजै, गुर कृपा ते मन तन पीजै, रसना नाम ते आए रस पीजै, रस ही ते रस पाएदा, महले अंदर महल को पाए, गुर कै शब्द सच तित लाए, जिसनु सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएदा, नाम

नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख निहा। नाम सलाही सदा सुख पाया, निज घर वासा पाएदा। सबको वणज करे वापारा, विण नावे सब टूटा संसारा। नागू आया नागू जासी, विण नावे दुख पाएदा। जिसनु नाम दे सो पाए, गुर कै शब्द हर मन वसाए। गुर कृपा ते नाम वसिया घट अंतर, नामो नाम ते आएदा। नावै नु लुचै जिती सब आई, नाउ तिना मिलै तुर पुरब कमाई। जिनी नाउ पाया सेवट भागी, गुर कै शब्द मिलाएदा। काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा। सच्चा न्याओ सचो वापारा, निहचल वासा पाएदा। अंतर घर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरलै किने थान पाया। इत साथ निभ सा लाहे सच्चे, हर सच्चा मन वसाएदा। मेरै करतै को बणत बनाई, इस देही विच सब वत पाई। नानक नाम वणजह रंग राते, गुरमुख को नाम पाएदा। मारू महला तीजा, काया कंचन शब्द विचार।

मेल मिलाऊं, तिनकी धूर लाई मुख मस्तक, सत संगत बह गुण गाएदा, हर के गुण गावा जी हर प्रभ पावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा, गुरबाणी चौकुंटी सुनिए, साचे नाम समाएदा।

पाया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाए दा, बिन भागा गुर सेवे।

काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख ले वै वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाए दा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता।

आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएदा, माया माई त्रै गुण प्रसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नु फरमाया, वरे महावा

राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएदा, वेद पढ़े अनदिन वाद संभाले, नाम न चेतै बद्दा जमकाले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रैगुण परम भुलाहिंदा, गुरमुख एक स्यों लवलाए, त्रिविद मनसा मनह समाए, साचै शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाइंदा।

मारू महला तीजा। अगम अगोचर बेपरवाहे आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सकै तिसनो गुर शब्दी में लाया। तुदनु सेव है जो तुद भाव है, गुर कै शब्दे सच समाव है। अन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया। शब्द मरह से मरण सुवार है, हर के गुण हृदय उरतार है। जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाऊ चुकाया। हर जीव

इस जग में लाहा पाया। तेरे गुण कहा मैं कहन न जाई, अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता, गुण मह गुणी समाया। इस जग में मोह है पासारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। धंधे धावत जन्म गवाया, बिन नावै दुख पाया। कर्म हुवै ता सतगुर पाए, हौमै मैल शब्द जलाए।

कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया। नाम मूलक अगम पारा, ना को हुआ तोलनहारा। आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवै करह अरदास, जो सेवक सेवै करह अरदास। तू आपे मेल बहालह पास, सबना जिया का सुखदाता। पूरै कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावै। इह मन निर्मल जे हर गुण गावै, इस भिख मह अमृत प्राप्त हुवै। हर जीव मेरे पाया, जिसनु बुझाई सुई बुझै। हर गुण गावै अंदर सूझै, हौ मैं मेरा ठाकर हाय। सहजे ही सच पाया, बिन कर्मा होर फिरै कनेरी। मर मर जमै चुकै ना फेरी, बिख का राता बिख कमावै। सुख न कब हूं पाया, बहुते भेख करे भेख धारी। बिन शब्द हौ मैं किने न मारी, जीवत मरै ता मुक्त पाए। सच्चै नाए समाया।

गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जोनी परमाए जम का जीवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौं मैं जाए समाया आवन जाने पर जिवे गोई बिन सतगुर थिर कोए न होई अंतर जोत शब्द सुख वसिया ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित वह बेकारा माया मुका इहु पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त हुवै पंच दूत वस आया बाज गुरु है मुहु गुबारा फिर डुब्बै वारो वारा सतगुर भेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया

सच्चे माहे समाया, करै अंदर को घर पाए, गुर कै शब्दे सहज सुभाए। उथै सोग विजोग ना व्यापै, सहजे सहज समाया, दूजै पाए दुष्टा का वासा, पौधे फिरै बहुमोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पाव है, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पार

अमृत चुग है गुर शब्द निवासा, उडह न मूले ना आवह न जाही, निज करवासा पाया काया शुद्ध है शब्द विचार है, बहुठ गोरी भरम निवार है, आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया, साध ही नेड़ दूर ना जान हूं, गुर कै शब्द नजीक पछाण हूं, बिकसै कमल किरण परगासै प्रगट कर देखाया, आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जिवाले अवर न कोई, नानक नाम मिले वड्याई, आप गवाए सुख पाया, मारू सोलहे महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सच्चा आप सुवारन हारा, अवर न सूजिस।

माही। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई हे। सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर न दूजा।

हो दयाल कृपा कर हर जीव रख ले वो गुरु शरणाई हे। अमृत रस सतगुरु चुवाया दसवें द्वार प्रगट हुए आया। तह अनहद शब्द वजह धुन बाणी सहजे सहज समाई हे। जिनको करते धुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही गुर चरणी चित लाई हे। जिस भावै तिसे आपे दे गुरमुख नाम पदार्थ ले। आपे कृपा करे नाम देवै नानक नाम समाई हे। ज्ञान रतन मन प्रगट भया नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडियाई गुर ते पाई सतगुर कौ सद बल जाई हे। प्रगटिया सूर निसमिटिया अंधियारा अज्ञान मिटिया गुरु रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी कर्म मिले सुख पाई हे। गुरमुख नाम प्रगटी है सोए चहु जुग निर्मल हच्छा लोए। नामे नाम रते सुख पाया नाम रहा लिवलाई हे। गुरमुख नाम प्राप्त हुवै सहजी।

नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहया घटवासी, किस बिन अवर न कोई दाता, हर तिसह सरेव हो प्राणी है। जाको राखै हर राखन हारा, ताको कोई न साक सुमारा, सो ऐसा हर सेव हो संत हो, जाकी उत्तम बाणी है। जा जापै किच किथाऊ नाही, ता करता भरपूर समाही।

मूर्ख स्यों नहलूज पराणी, हर जपिए पद निर्वाणी हे। ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सब तै।

किसे सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी हे अन दिन नाम जपो बनवारी सब आसा मनसा पूरे थारी जन नानक नाम जपो भव खंडन सुख सहजे रहन विहानी हे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

गुर कै शब्द भरम भौ भागै, विचे ग्रह सदा रह उदासी, जो कमल रह विच पानी हे, विच होमै सेवा थाए न पाए, जन्म

वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे। गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किछ कीमत कही न जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता। मात पिता सुत बंद

निश्चो है तरना, मन बच कर्म अराधे करता। किस नाही कदे सजाई हे, गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म वरण की जोन न पभया।

अंगीकार किया प्रभु अपने जग में शुभ सुहाई हे। जय जय कार जपो जगदीश है बल बल जाई प्रभु अपने ईसे तिस बिन दूजा अवर न दिसे एका जगत सुभाई हे। सत सत सत प्रभु जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवै जन तेरे एक अंकार सुमाई हे। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई हे। भगत जना का प्रीतम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा।

है संसार जिसा जोर कर देखे सोए नानक कुटुंब राती रुती थकी पा पौन पानी आगी पाता दिस विच धरती थावर थी।

भजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

असंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आर प्रेत रहे संत मलेच मल पाख है असंत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत लो।

सोहन मन प्रवान नदरी कर्म प्रवे कच्छ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का।

कैसे कैसे रत्न तुम हम कितिया कितिया सुखी नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान प्रचंड।

कृता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वग माए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिर अशांत मलेर मार पाक खाए अशांत निंदक।

निर्विकार निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कराए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे सुनाए अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जाना के जो तुम पावे सही करेगा सदा सुनाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी शरणम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत।

हर कले कर दो जी जात रंगा के ना सब नाल के अमरी सु एवले काल के जाने होए कितना तार सुनाले और रोंगे कितना बताओ एक

संकल्पाओ संकल्पिया संकल्पाओ संकरंति देवा संकल्पो मनकहें संकल्पगत विज्ञान विचार संकल्पी असंकल्पा संकल्पूर मोह मत्ता।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वह संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेर मल पाए असंत

कर्ता निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सुचै सो

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़ यार करे सुधाए अशांत मलेच मार पाक खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या मारे न जामा के जो तुझ पावे सही परिकार सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत लो संत कहें सिर्फ

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी सत।

भाई पलिका अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख गलवड हत्या कमाए अशंख पापी पाप अशंख मूर्ख यार करे सदाए अशंख मलेच माल पाखाए अशंख निंदा

बस आकाणी ब्रह्मा अश्वान्तरम कमल सुरेंद्र भगत कमल कमल सिद्ध कमल कमल सुरस्ति माता वेद न पाइया पंडित।

माता विस्मित धरती थाप थी धर्म था विस्मित जगत के रंग फिर के नयाने कर्मी कर्मी होए विचार साहब इतने सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे कच्छ खाई उत्थे पाए नानक गया कर्म खंड का

कर्ता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़ यार करे फिराए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे मारे न जाना के जो तुम पावे सही परिकार।

0: पे जाए है साला जी साला है नदियां से बाहर पांचों ना जान समुद्र सा सरता गिरी कुल नावनी
1: अंत न सुनी कहना अंत न करने देना अंत न देखन सुन

सत्कृत निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर रावण अशंख अमर कर जाए अशंख काल वाय शंख पापी पाप अशंख कूड़े आर करे फिराए अशंख मलेच मल पाए अशंख निंदक करे पा नानक नीच कह मारे न जाना एक जो सुख पावे सही परिकार।

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े यार करे सुधाए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे जा मारे न जाना जो सुख पावे।

अंतर्गति जग मन लाओ सब गुरु तेरे सुनाई होए बिन गुरु की जय मन होए स्वस्थ आस वाणी ब्रह्मा सत सुहान ब्रह्म कवन सुनेला भगत कवन कवन सिद्ध कवन कवन सृष्टि महान वेद न पाया पंडित।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूड़े यार करे फिराए संत मलेर माल पाए असंत निंदक करे नानक नीच कह मारे न जाना ते जो सुख पावे सही करे कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत लोग संत कहें सिर्फ।

आकाणी ब्रह्मा सत्वान ब्रह्मा कमल सुरेला भगत कमल कमल क्षेत्र कमला

पांच दोख अर अहं रोग ए संते सगल दूर कीना रहाओ बंधन तोर शोर भिख्या से गुरु को साधु मेरा ही रह दीना रूप अनूप मोरो कचना बिचार्यो प्रेम गे हो मोहे हर रंग पीना पेख्यो लालन पाठ बीज खोए अनस चिता हर के पतीना तिसी को ग्रहो सोई प्रभ नानक सो ठाकरो तिसी को तीना पेख्यो लालन पाठ बीज खोए अनस चिता हर के पतीना तिसी को ग्रहो सोई प्रभ नानक सो ठाकरो तिसी को तीना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ओंकार सतनाम सच्चा पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत योनी सैभं प्रसाद जप आदि सच जुग।

मान रे हो मैं सूर्ग मान। हर गुर सर्वर सेव तू पावे दरगह मान। हम राव राम नाम जप दिन से रात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हरत कोकणे संत सभा मिल ज्ञान। नित अहनत हर प्रभ सेव्या सतगुरु दिया नाम। कुकर कूड कमाई है गुर निंदा पचे पचान। परमे पूला दुखणो जम मार करे खुलहान। मनमुख सुख न पाई है गुरमुख शुभ सुभान। ऐसे संत पिटाई है सच लिख परवान। हर सज्जन गुरु से बदा गुर करनी प्रदान। नानक नाम ना विसरै कर्म सचै निशान। श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रोग बड़ा मन माहे। क्यों दरगह पद पाई जा हर न बसे मन माहे। गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे। मान रे है न सार गुण सार जिन खिन पल ना विसरै जन विरले संसार। रहाओ ज्योति ज्योत मिलाई है सुरसी सुर संजोग। ईसा हमें गत गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वस है इस मेले गुर संजोग। काया कामण जे करी उगे भोगण हार। शिष्यो ने की जई जो दी से चलन हार। गुरमुख रवे सोहागणी प्रभ प्रभ सेज पतार। चारी अग्निर्वार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल प्रगासया अमृत परया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल। मन सच सच कदी लाइया तुलिए पूरे तोल। कीमत किने ना पाइया रिद मानक मोल अमोल। पाई रे हर हीरा गुर माहे सत्संगत सतगुरु पाई है एहन शब्द सलाहे। रहाओ सच बकर तन रास लै पाइये गुर प्रगास। जो अगन मरे जल पाया जो सिरसना दासन दास। जम जंधार न लग गई जो भौजल करे तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए। साकत सच न पावई कूड़े कूड़ी पाए। सच रते गुर मिलिया सचे सच समाए। मन में मानक लाल नाम रतन मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर। सच बगर तन नाम है घट कर गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला परमे पाए न बिजवै ये पवित संतर देश। अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेश। और किते भक्त न हो गई बिन सतगुरु के उपदेश। मान रे गुरमुखी अग्नि निवार गुर का कहया मन वसै। मैं तृष्णा मार। रहाओ मन माल मानक निर्मूल है राम नाम पद पाए। फिर सत्संग हर पाई गुरमुख हर लिबलाए। आप गया सुख पाया बिल सलले सलल समाए। जिन हर हर नाम ना चेत्यो सो अवगुण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख ना पेट्यो तो पौजल पचे पचाए। यु मान गजू निर्मोल है यु कौटी बदले जाए। जिना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान। गुर मिल पौजल लंगिया
ਦਰਖੈ ਪਤ ਪਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੂਜਲੇ ਸੁਨ ਉਪਜੈ ਸਬਦ ਨੀਸਾਨ ਗਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰੇ ਹੋ ਬਖਰ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਬਸ ਬਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਉ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਜਸ ਬਖਰ ਲੈ ਚਲੋ ਸੌ ਦੇਖੇ ਪਤਿਆਏ ਰਹਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਬਣਜ ਮਣ ਜਿਆ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟਾ ਹੋਏ ਪਾਈ ਫਾਸੇ ਮਿਰਗ ਜੋ ਦੂਕਣੋ ਲਿਥ ਰੋਏ ਖੋਟੇ ਪੋਸੇ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਾ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਜਸ ਨਾ ਪਾਸ ਹੈ ਖੋਟ ਨਾ ਸੀ ਚਿਤ ਕੋਏ ਖੋਟੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਸਿਨਾਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਸਿਨਾਹਾ ਹਰ ਜਪ

की आवे सोहरे इतना कैया होए नानक चुसी पिए जान ब्रती साना गुणा गवाई गंठड़ी साब गुण चली पाना श्री राग माला पहला कर दूजा तूजा आपे रसी आप रस आपे रावण हारो आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पसारो रंग रता मेरा साहेब रब रहा भरपूर रहाओ आपे मछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मन कड़ा आपे अंदर लाल आपे भव्य रंग ला।

ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਵੀ ਨਾ ਬੁਝਈ ਅੰਤਰ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰ, ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ, ਸਤਿਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਫਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਉਗਵਾਏ, ਸਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਭਵੇ ਸਭ ਥਾਏ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜਨ ਕਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ, ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰੈ ਮਾਸੂ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਖ ਬੂਝੀਐ ਪਾਈਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਸੀਚਾ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਵਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਹਰਿਆ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਸਾਸ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਸਾਸ, ਤੰਦਰਸਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰੇ ਜਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਵਸ ਹੈ ਤਿਸ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਸੇ ਆਏ, ਸੁਰਮਾਸੁਜਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਬਲਾਏ, ਰਾਓ ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਭਰਪੂਰ, ਗੁਰਮਤ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਕੀ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੈ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਔਗਣ ਮਤਿਆ ਦੂਰ, ਮਨ ਗੁਣ ਸਹਿ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮਰਦੇ ਚੂਰ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨ ਸਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ, ਅੰਦਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਸੰਭਕਾ ਬਿਨ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਰੋਏ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਜੋ ਚੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਹੰਤ ਗਿਆ ਪਜਤਾਏ, ਜਿਸ ਨਾ ਵਿਕਰੇ ਸੋ ਉਭਰੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵਲਾਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੈ ਮਨ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਤੇ ਭਈ ਤਿਨ ਸਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦੂ ਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਪਤ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਮਲਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਰਹਾਉ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ, ਸਭੇ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਟਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ, ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੌ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਛ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਬਕਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਅਸੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਾਈ ਰੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਪੂਰੇ ਹਰ ਇਹ ਮਨ
ये मन आलस क्या करे है, गुरमुख नाम त्याए रहो। हर भक्त हर का प्यार है, ये गुरमुख करे विचार, पाखंड भक्त न हो गई सुबदा बोल कुवार। सो जनर आया नार लह जित अंतर वेग विचार, सुशिव घर आखिया है और जो शिव घर आखिया है, जो हर राके और सार। मंथन सौपे आगे तरे हमे बिचू मार, तन गुरमुख सु प्रवान है एक दिन आवे हार। कर्म मिले था पाइये कर्मा पाया ना जाए, लग चुरासी तरस दे इस मिले तू मिले हरियाए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए, जग महला तीजा सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। अंधन नाम त्याई है सहजे नाम समाए, अंदर रचे हर सच सो रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे पाए, कुरछर नाई सुख लहे अंदर नाम से आए। राव साची महल ला गई मन निर्मल हर से आए, गुरमुख सब पछाणिए हरे अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाए, मनमुख मैले मल परे हमें तृष्णा बेकार। शब्दी महल नाई उतर है मर जमे हुए कुवार, सासुर बाजी पच रहे ना उर बार ना पार। गुरमुख जब तब संजमी हर के नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सपना जिया का आधार, शरीर आग महला तीजा मानक मोहे पिया पिया। बैराग उदासी ना होए सावधान चीने सदा, दुख हर दरगा पद कोए। सावधना चीने सदा दुख हर दरगा पद कोए, और मैं गुरमुख कोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन है नित पूर रही नित आशा, तत्व से मोह पर जल है कारी माहे उदासा रहो। गुरमुख कर्म कमावे विक्षे हर बराग आनंदो, ऐनस पग करे दिन राती ओमे मार निचेंद। बड़े पग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंदो, तू सब बैरागी सोई हिरदे नाम बसाए। अंतर लागना सामत मूले बेचू आप गवाए, नाम दान सतगुरु दिखा लिया हर रस पिया अगाए। जिनकिने पाया सात संगति पूरे पाग बैराग, मन भरे न जाने सतगुरु हमें अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए पिन पै के ही लाग, श्री राग महला तीजा कारी सौदा पाई है। अंतर सब बात कोए खिन खिन नाम समाली है, गुरमुख पावे कोए। नाम निदान अखुट है भागी प्राप्त हुए, मेरे मन तज निंदा होमे अहंकारो। हर जियो सदा त्याय तू गुरमुख एक ओंकारो रहो। गुरमुख के मुख उजले गुर शब्दी विचारो, हाथ फल सुख पाए दे जप जवर दे मुरार। घारी बिच महल पाया गुर शब्दी विचारो, सतगुर से जो मोह फिर है मते तिन काले। अंधन सुख कमावणे अंधन दुख कमाव दे इस जोहे जम जाले। सुपने सुख न देखनी बो चिंता पर जाले, सबना का दासा एक है आपे बख्श करे। कहना कुछ न जावई इस पावे तिस दे, नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा सच्चा साहेब सीवी है सच बड़े आई दे। गुर प्रसादी मन वसै हमें दूर करे, ये मन तापकार है या आपे नद करे। पाई रे गुरमुख हर नाम से आए, नाम दान सद मन वसै
मैली पावे ताओ राओ मन मुख मन तन हंध है नो ठौर ना ठाओ बोझोनी पौधा फिरै जो संजे कर काओ गुरमती कर चानना साध मिले हर नाओ त्रैगुण बिखे हंध है माया मोह गुबार लोभी अन को सेव दे पर बीता करे मैं पुकार बिखे अंतर पच मोए ना उर बार ना पार माया मोहि बिसारिया जगत का प्रात पाल बाजो गुरु अचेत है सब दी जमकार नानक गुरमति उभरे सच्चा नाम संभाल श्री राग महला तीजा त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए कर कृपा मिलायन हर नाम बचा मन आए उसे जन के पुन है तिन सत्संग मिलाए पाई रे गुरमत साच सा रहाओ साचो साच कमावना साचे शब्द मिलाओ रहाओ जिनी ना पिछाड़िया तिन बिटू बल जाओ आप झूठ चरणी लगा चला तन के पाए लहा हर हर ना मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाई है नाम ना प्राप्त हुए ऐसा सतगुरु रोड लहो जिस पाइये सज सोए असुर संगारे सुख बस है सुख पावे सो होए जिया सत कर जाने जिया सतगुरु कर जाने इो जिया सुख होए इो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो सोए मूर्ति सब मिलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत चोर बिख्या लोभाने सेवा करके बिडानी अपना तन गवावे अपना धर्म गवावे पूजे नाही अंदन सुख बेहानी मन मुख अंध न चेत ही गुरु मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर शरणाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर बिसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला पिछो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जमन मरना मन भक्त गवाई सतगुरु सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुरु की सेवा अत सुखारी जो इच्छे सो फल पाए जब सत सब पवित्र शरीरा हर हर मन बसाए सदा आनंद रहे दिन राति बिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुरु की शरणागति और तन के बल जाओ तब सचे सच्ची बड़े आई सहजे सच समाओ नाक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कवाव कमावण है तो दोहाग्नि सन सीगार सहजे कंस न आवई निसन सोए खुआर तिरका महल ना पावई ना दी से कर बार भाई रे इक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहा जप राम नाम सुख पाए रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी फिर राख्या उड़तार मीठा बोल है निव चल है तेजे रवे पसार शोभा बांसी सुहागणी जिन गुर का हित अपारो पूरे पाग सतगुरु मिले जा पागे का उदो हुए अंतरो दुख परम कटिए सुख परावद होए गुर के पाने जो चला है दुख न पावे कोई गुर के पाने बिच अमृत है सहजे पावे कोई जिना प्राप्त तिन पिया मोहमै बिचू कोए नानक गुरमुख नाम से आई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना तन मन अगे तेरे सुहागनी कर्म कमाव दिया सही कर्म करे सहजी साज मिलावड़ा साज बढ़ाई रे पाई रे गुर बिन भक्त न होए बिन गुर भक्त न पाइए ये लोचे सब कोए रहाओ लाख चौरासी पीर पाया कामन दूजे पाए बिन गुर नींद न आवई
सुखी रहन बिहाए बिन साहब दी प्रेरणा पाई है बेटा जन्म गवाए हो करती जग फ्री ना तन सपै नाल अंधी नाम ना चेतई सब भागी चमकाल सतगुरु मिले तन पाया हर नाम हरिदे समाल नाम रते से निर्मले मुरके सहज सुभाए मंथन रता रंग स्यो रसना रतन रसाए नानक रंग ना उतर है जो हार सुर छोड़िया लाए श्री राग महला तीजा गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होई आपे आप मिलाए भूजै ता निर्मल हो वह सोई हर जियो साचा साची बाणी सौद मिलावा हुए पाई रे पगति काहे जग आया पूरे गुरु की सेवना किनी बिरसा जन्म गवाया रहो आपी जग जीवन सुख दाता आपी भक्त मिलाई ये जंत ए क्या विचारी क्या को आख सुनाई गुरमुख आप दी वडाई आपी जीव कराई देख पटा मोह लुभाना चलद्या नाल ना जाई सतगुरु सेव गुण दान पाया इसकी कीम ना पाई हर पग सखा मीत पर मेरा आते हुए सिखाई अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप ना जाई हर जियो दाता भगत बचल है कर कृपा मन बसाई ज्ञान शोभा सुरत से तब आपे गुरमुख दे वड्याई श्री राग महला तीजा धन जन्मी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया मृत्यु गया गुमान दर सिवान संत जन हरे पायन गुण निदान मेरे मन गुरमुख गुरमुख अत्याय हर सोए गुर का शब्द मन वसै तन मन निर्मल होए राहो का कृपा कर आया आप ही मिले आए उस शब्दी साला ही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच सुमाया बिन मिल रहे न बिछड़ जाए जो कुछ करना तो कर रहा अवर ना करना जाए चीरी बिछुने मेलिया न सतगुरु पन्न पाए आपे कार कराए थी अवर ना करना जाए मंथन रत्ता रंग से हो हमें सदबीकार रब है तो नाम निरंकार नानक आ मिलायन पूरे शब्द अपारो श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए कसनी बदनी न पाई है और मैं भी चू जाए सतगुरु मिले सद पैर चह आपसे मन आए पाई रे गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावने जन पदार्थ कोए रहो तिनी चाख्या तिनी साध पाया तिन चाके परम पुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए पिवसू परवान तया पूरे शब्द समाए आपे दीता पाई है और करना किछु न जाए जीवन बाले के हाथ दात है गुरुद्वारे पाए यह किसोन सोयत यह हुआ जेहे कम कमाए जब संजम नाम है नावे निर्भर ना हुए पूरे पाग नाम मन बसै सद मिलावा हुए नानक सहजे ही रंग बरतदा हर गुण पावे सोए ती राग महला तीजा काया साधे खुद सब कर है पिछू हो मैं न जाए अति आत्म कर्म जी करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवित मरे हर नाम बदे मन आए सुन मन मेरे पाए सतगुरु शरणा गुरप्रसादी छुटिए बिक पा दिल शब्द गुर शरणा रहो त्रैगुण सबा सात है दूजा पाओ विकार पंडित पड़े बंधन मोह बाधा न पाइए तू न बूझे भी क्या प्यार सतगुरु मिले त्रिकुटी छुटे चौथे पद्म सुवार
गुर से मार्ग पाई है, क्योंकि मोह गवार सब मरिता उजर है, पाए मोह द्वार कुछ प्रसादी मिल रहा है, सच नाम करतार ये मनुआ अस बल है, छे न किसी को पाए, दूजे पाए दुगुलाए रहा बहुत ही दे सजाए, नारक नाम लगे सी उबरे हमें शब्द गवाए, श्री राग महला तीजा कृपा करे गुरु पाइया, हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने ना पायो बिरसा जन्म गवाए, मन कर्म कमावने दरगाह मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंत तेरे हर बसै हमें क्रोध निवारो, अंत तेरे हर बसै कुछ सेवा सुख पाए।

गुणी गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पहचान्यो सुपना गया बहाए सुनिए कर का पौना ज्यो आया त्यो जाए मन मुख जन्म बरता गया क्या मुंह देसी जाए सब कुछ आपे आप है हमें बिच कह ना जाए गुर के शब्द पछाणिए दुख हमें बिचो गवाए सतगुर सेवन अपना ओ तिन कह लागे पावे नानक दर सच्चे सचियार है हो तिन बलिहारे जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला भक्त विचारिये ता कित वेला भगत हुए अन दिन नामे रत्या सच्चे सच्ची सोए

मन हर का नाम त्याए साची भगतता तीय जा हर वसे मन आए रहो सहजे खेती राहिए सच नाम बीज पाए खेती जम्मी अगली मनवा रजा सहज सुभाए गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिक जाए यो मन सच्चा सच रत्ता सच्चे रहा समाए आकुण वेखण बोलना सबदे रहा समाए पानी बजे चौ जुगे सचो सच सुनाए होमे मेरा रह गया सच्चे लिया मिलाए इनको मैल दूर है जो सच रहे लिवलाए नदरी नाम त्याये वीण कर्मा पाया न जाए पूरे भाग सत संगत लहे सतगुर भेटे जिस आए आन दिन नामे रत्या दुख बेख्या बिच हो जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायोन जिन गुर का शब्दी विचार सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकाइयन हर राख्या उरतार सच्ची बाणी सच मन।

मन मुख बूझ न पाए, जे सतगुर मिले सो मिले, सच्चे शब्द समाए। मित्र कनेरे कर थकी, मेरा दुख काटे कोए, मिल प्रीतम दुख कटिया, शब्द मिलावा होए। सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए।

आपे नदर करे से जान शब्द सोने तित सच्चा दरबार गुरमुख सच्चे शब्द रते आपे मेले करतार गुरमति सच सलाहना जिसदा अंत ना पारावार घर घर आपे हुक्म बसे हुक्मे करे विचार गुर शब्दी सलाहिए हमे बिचों कोए सातन नावे बारी अवगणवंती रोए सच सलाई सच लगा सचे नाए त्रिपत होए गुण विचारी गुण संग्रह अवगुण कड्डा धोए आपे मेर मिलाएगा फिर विछोड़ा ना होए नानक गुर सलाई अपना जिद्दू पाई प्रभ सोए श्री राग महला तीजा।

अपना सहजे सच समाए राव शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार हर वार पायन कर अपने गुर के हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भक्त परि पंडार।

दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जीव बख्शे बख्श ले सुख सदा श्री रे गुर प्रसादी सेव करी सच गैर गंभीर मन मेरे नाम रत्ते सुख होए गुरमति नाम सलाही है दूजा

मेरी सरकार अध्यात्मी हार गुण तास मन जपे एक मुरार इनकी सेवा धर्म राय करे धन सवारण हार मन के विकार मन तजे मन चूके मो अभिमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाइय मन मुख फिरे दीवान शब्द ना चीने कतनी बदनी करे विख्या माहे समान सब कुछ आपे आप है दूजा अवर ना कोए जो बुलाए तो बोलिए जा आप बुलाए सोए गुरु।

होवे जासन भक्त गवाए गुर प्रसादी मन वसै माल होमे जाए समाए ज्यो अंधेरे दीपक बालिए त्यो गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

सच बाणी निज ताओ मन रत्तै जेह वरती हर गुण सच्चे गाओ नानक नाम न विसरै सच्चे माहे समाओ।

सज्जन सतगुर पुरख दुख कड्डे होमे मार रहो गुरमुखियां सुहागणी तीन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मने सो हर रस खाए सेवड़ भागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए

तिसका जो तिस भावे सोए गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा जिना सतगुरु।

संस्पाव संस्पिया संस्पाव संस्करण निवेश पाव संस्लोग मन्त्रण संस्पदक दिव्यांग जा

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत कूड़े आर मरे फिराए संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे पास नानक नींद कह जा वारे न जा माते जो तुम पावे सही फलिका सदा।